0: अरे बेटी बड़ी बात, ये राहुल तो यहाँ नहीं है।
1: अरे वो भी मिल जाओ यहाँ पर, नहीं दो मिनट बाद इसकी एंट्री होने वाली है यार, कहाँ है वो, जाकर ढूंढो।
0: ओह गॉड, मैं अभी आया।